0: घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा स्थायी रूप से स्थगित। मौसम विभाग का उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और साग्निक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप के अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अमरीका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत अमरीका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों, ऊर्जा सुरक्षा तथा महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता दोहराई। आपसी हित से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। श्री मोदी ने उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनकी पत्नी उषा वेंस को उनके पुत्र के जन्म पर शुभकामनाएं दी। हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो रहा है। यह अभियान 17 तारीख तक चलेगा। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
3: हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी और अब ये एक बड़े जन भागीदारी अभियान का रूप ले चुका है। इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान का विशेष महत्व है क्योंकि ये राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा।

14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्यिक दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। इस वर्ष सूर्यपथ तिरंगा डिजिटल रिले भी आयोजित होगी। इसमें 54 भारतीय राजनयिक मिशन और केंद्र हिस्सा लेंगे। ये रिले 15 अगस्त को फिजी से शुरू होकर सैन फ्रांसिस्को में समाप्त होगा। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।

0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर पुद्दुचेरी में हैं। श्री शाह गोरीमेडू के पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में पुद्दुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज पुडुचेरी पुलिस को औपचारिक झंडा सौंपेंगे। भारत के राष्ट्रपति ने 8 मई को पुडुचेरी पुलिस की असाधारण सेवा, अनुशासन और शानदार उपलब्धियों के सम्मान में उन्हें पुलिस कलर देने की घोषणा की थी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित औपचारिक परेड में केंद्र शासित प्रदेश पुलिस की विभिन्न शाखाओं के जवान भी भाग ले रहे हैं। इस समारोह में पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाश नाथन, मुख्यमंत्री एन रंगासामी और गृह मंत्री ए नमासीवयम भी मौजूद रहेंगे। दोपहर बाद अमित शाह पुडुचेरी में मुरुगा थिएटर सिग्नल पर हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए पूरे पुडुचेरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमित कुमार त्यागी।
0: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य और देश के विकास में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 15 अगस्त से राष्ट्र निर्माण में भागीदार कार्यक्रम शुरू करने का आह्वान किया है। श्री नायडू ने कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों से 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों पर राष्ट्र ध्वज फहराने

0: ने और मेरा राष्ट्र राष्ट्र सर्वोपरि की भावना को बढ़ावा देने का आह्वान किया है। सरकार ने चार उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। सबसे अधिक 15 न्यायाधीशों की नियुक्ति मद्रास उच्च न्यायालय में की गई है। वहीं कलकत्ता उच्च न्यायालय में 8, कर्नाटक उच्च न्यायालय में 6 और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में 1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। विधि और न्याय मंत्रालय के अनुसार इन 30 न्यायाधीशों में 20 वकील और 10 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं। इन नियुक्तियों को राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय की कलीजियम की सलाह के बाद मंजूरी दी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी गतिरोध अब समाधान की दिशा में बढ़ता दिख रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों के बीच आज दोपहर करीब 12 बजे अगले दौर की वार्ता होने की संभावना है।
1: सरकार के वार्ता दल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर छात्रों के साथ हुई पहली दौर की बातचीत में हुई प्रगति से उन्हें अवगत कराया है। सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के विभिन्न गुटों के बीच पहले दौर की उच्च स्तरीय वार्ता कल रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सकारात्मक माहौल में हुई थी। सरकार के प्रतिनिधियों ने परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के प्रति प्रतिबद्धता जताई। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक आधिकारिक फीडबैक ईमेल आईडी भी जारी की है, जिसके माध्यम से छात्र और हितधारक अपने सुझाव दे सकते हैं। इधर छात्र नेता रविन्द्र पासवान ने कहा कि छात्र पिछले 15 दिनों से अनिश्चितकाल धरने पर हैं और पहली वार्ता में उन्होंने अपनी मांगे विस्तार से सरकार के सामने रखी हैं। इस बीच कल शाम रांची में छात्रों ने JPSC JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लिए जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर फ्लैशलाइट मार्च भी निकाला। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: जम्मू कश्मीर में वर्षा और खराब मौसम के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा स्थगित कर दी गई है। मौसम विभाग के अनुमान को देखते हुए यात्रा अस्थायी रूप से रोकी गई है। जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कल किसी भी नए जत्थे को रवाना नहीं किया गया। इस बीच बालतल आधार शिविर में ठहरे हुए 1202 तीर्थयात्रियों के 28वें जत्थे को 44 वाहनों में जम्मू के लिए रवाना किया गया। श्री अमरनाथ गुफा में कल 3,336 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस वर्ष अब तक अमरनाथ यात्रा में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 4,80,019 हो गई है। 57 दिन की अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को पहलगाम के पारंपरिक चंदनवाड़ी मार्ग और गांदरबल के बालतल मार्ग से एक साथ शुरू हुई थी। यात्रा का समापन 28 अगस्त को पारंपरिक छड़ी मुबारक समारोह के साथ होगा। इस बीच मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज वर्षा की आशंका है। विभाग ने जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, केरलम, माहे, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में गरज चमक और आंधी तूफान की संभावना जताई है। इधर दिल्ली और आसपास के इलाकों में दिन के दौरान हल्की वर्षा और बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई जिलों में अगले 48 घंटों में बहुत तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के पर्वतीय जिलों में तेज वर्षा की संभावना है। देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में कल भी भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर में कहीं कहीं भारी वर्षा का येलो अलर्ट है। मौसम की स्थिति को देखते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने सभी संबंधित जिलों को 24 घंटे सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। श्री सुमन ने प्रदेशवासियों और पर्यटकों से मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सावधानी बरतने की अपील की है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, देहरादून।
0: उड़ीसा में भी कई क्षेत्रों में तेज वर्षा जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बाढ़ के कारण बड़े स्तर पर फसलों को नुकसान होने की आशंका है।
3: उड़ीसा में एक बार फिर बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। आईएमडी ने कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। सुंदरगढ़, संबलपुर, झारसुगड़ा और बरगढ़ जिलों के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों के लिए येलो वार्निंग है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों का जल स्तर बढ़ने से यहां निचले और जोखिम वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को फिर से बाढ़ आने का डर

0: बता रहा है। अधिकारी स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और जोखिम वाले इलाकों में पूरी तैयारी बनाए हुए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: चीन के हेफेई में 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप में भारत के सागनिक रॉय और सायंतन कुशारी की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। क्रोएशिया की एम फेरेनका और एफ कटुसिच ने दूसरा स्थान और चीन के जे हान और जेड वांग ने तीसरा स्थान हासिल किया। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स फाइनल में भारत की अश्मिता चालिहा और चीन की क्यू हान के बीच मुकाबला जारी है। मैच का पहला गेम क्यू हान ने 21-14 से अपने नाम कर लिया है। अमरीकी सरकार विदेशी कर्मचारियों को नई नौकरी खोजने के लिए 60 दिन का अतिरिक्त समय देने वाले नियम को समाप्त करने पर विचार कर रही है। ये प्रस्ताव व्हाइट हाउस के प्रबंधन और बजट कार्यालय के पास है। ये नियम लागू होने पर कई H-1B वीजा धारक कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को अमरीका छोड़ना पड़ सकता है। इस बदलाव का असर भारतीयों पर भी पड़ सकता है। H-1B वीजा धारकों में भारतीय नागरिकों की बड़ी हिस्सेदारी है। अमेरिका में भारतीय मूल के 52 लाख से अधिक लोग रहते हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद मुकेश। IIT दिल्ली के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी बोले, युवा सिर्फ सवाल ना पूछे, समाधान भी खोजे, भारत को नए शोध की जरूरत। जनसत्ता की सुर्खी है, बिना सोचे समझे स्वीकार की जाने वाली बातों पर सवाल उठाएं विद्यार्थी। दैनिक जागरण के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जेंजी को पीएम ने दिया संदेश, कहा पैकेज और नौकरी की तुलना करने से बचे। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, जेंजी के रंग में मोदी, सतपुड़ा के पराठे हॉस्टल निकनेम के साथ भविष्य की सीख, आरा कारा विंधी जिया सराय का पोहा। पंजाब केसरी ने अकाली भाजपा का गठजोड़ शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, राज्य स्तर पर जब भी पंजाब में अकाली दल के नेतृत्व में प्रकाश सिंह बादल या उनके पुत्र सुखबीर बादल की सरकार बनी, उसमें भाजपा के प्रतिनिधि शामिल हुए, लेकिन अकाली जनसंघ गठजोड़ की इस विरासत में इस दौरान राज्य की बदलती परिस्थितियों के अनुरूप मूलभूत बदलाव भी आते रहे हैं। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, हाइब्रिड और ईवी कारें सस्ती होंगी, ज्यादा प्रदूषण वाली होंगी महंगी, ऑटो इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव, नई पॉलिसी अप्रैल 2027 से लागू होंगी। अमर उजाला की सुर्खी है, अंतरिक्ष के कचरे से होगा कारोबार, मलबा हटेगा, उपग्रहों की मरम्मत भी, एस्ट्रोस्केल क्लियर स्पेस जैसी कंपनियों ने शुरू किया काम। जनसत्ता ने आस्था शीर्षक से विशेष खबर में लिखा है, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, परंपरागत के साथ आधुनिक व्यंजन भी, मुख्यमंत्री योगी ने कहा 4.5 करोड़ कांवड़िए जल लेकर आएंगे, श्रद्धालु अपने इलाके में शिव मंदिरों में जलाभिषेक करेंगे। लोकसत्ता के अनुसार E20 विवाद के बीच सरकारी तेल कंपनियों का दावा, ईंधन पूरी तरह सुरक्षित, न घटेगी माइलेज, न खराब होगा इंजन। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार बठिंडा में हनी ट्रैप गिरोह, 23 महिलाओं समेत 28 काबू, वायुसेना अफसर ने पाक को दी सैन्य जानकारी, गिरफ्तार। दैनिक जागरण का शीर्षक है, AI ने भारत में जितनी नौकरियां घटाई उससे 2.5 गुना ज्यादा पैदा की, नोमुरा की रिपोर्ट में दावा, 83,100 AI से जुड़ी नौकरियां बढ़ी, 31,921 पर पड़ा असर।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ करने के उपायों पर चर्चा की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ हर घर तिरंगा अभियान आज से देश भर में शुरू। सरकार ने मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालयों में 30 न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी। वर्षा के कारण पहलगाम और बालतल मार्गों से श्री अमरनाथ जी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित और सागनिक रॉय और सायंतन कुशारी ने 9वीं वर्ल्ड यूथ ट्रांसनेशनल चैंपियनशिप की अंडर 31 स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड US वाइस प्रेसिडेंट JD Vance डिस्कस वेज टू फर्दर स्ट्रेंथन कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इन की एरियाज। हर घर तिरंगा कैंपेन बिगिंस टुडे, कोइंसाइडिंग विद 150th anniversary.

0: ಸುನಹರೆ ಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಈವರೆಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಮೂಡಿಬಂತು. ಸಮಯ 11 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತಲಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ 111.
1: ಸ್ವತಃ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ 111.
2: ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೋಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಂಬರ್ 111 ಮೇ ಮೈ ನೀಲಮ್ ಮಲ್ಕಾನಿಯಾ ಆಪ್ ಸಭಿ ಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್ತಿ ಹೂ. ಸಾಥಿಯೋ, ಹಮ್ ಜಾನ್ತೆ ಹೀ ಹೈ ಕಿ ಹಮಾರಾ ಯೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜೀ ಕೆ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಾ ವಿಸ್ತಾರ ಹೈ. ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜೀ ನೆ ಇಸ್ ಬಾರ್ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಮೇ ಹಮಾರೆ ಬುನ್ಕರ್ ಭಾಯಿ ಬಹನೋ ಕಾ ಉತ್ಸಾಹ ವರ್ಧನ್ ಕಿಯಾ ಹೈ ಔರ್ ಹಥಕರ್ಘಾ ಜೊ ಹೈ ಉಸ್ಕಾ ಮಹತ್ವ ಉನ್ಹೊನೆ ಬತಾಯಾ ಹೈ. ಸಾಥ್ ಹೀ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಥಕರ್ಘಾ ದಿವಸ್ ಜೊ ಕಿ ಸಮರ್ಪಿತ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಹೈ ಬುನ್ಕರ್ ಭಾಯಿ ಬಹನೋ ಕೋ ಉಸ್ಕಾ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾನನೀಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಜೀ ನೆ ಕಿಯಾ ಹೈ. ಆಯೇ ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಮೈ ಆಪ್ಕಾ ಪರಿಚಯ ಕರವಾತಿ ಹೂ ಆಜ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮೇ ಹಮಾರಿ ವಿಶೇಷಜ್ಞ ಸೇ ಔರ್ ಉಸ್ಕೆ ಬಾದ್ ಹಮ್ ಆಪ್ಕೋ ಸುನವಾಯೆಂಗೆ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಾ ವೋ ಹಿಸ್ಸಾ ಜಿಸ್ ಮೇ ಹಮಾರೆ ಬುನ್ಕರ್ ಭಾಯಿ ಬಹನೋ ಕಾ ವಿಶೇಷ ತೌರ್ ಪರ್ ಉಲ್ಲೇಖ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಹೈ. ಆಜ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮೇ ಹಮೇ ಸಮಯ ದಿಯಾ ಹೈ ಹಮಾರಿ ವಿಶೇಷಜ್ಞ ಹೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಬೀನಾ. ಆಪ್ ಪ್ರಶಾಸನಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೈ ಔರ್ ವಿಕಾಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಹೈ ಹಥಕರ್ಘಾ ಸೇ. ಮೇಡಮ್, ಆಪ್ಕಾ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಸ್ವಾಗತ ಹೈ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಮೇ.
3: ನಮಸ್ಕಾರ.
2: ಆಯೇ ಅಬ್ ಹಮ್ ಅಪ್ನೇ ಶ್ರೋತಾವೋ ಕೋ ಸುನವಾತೆ ಹೈ ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕಾ ಏಕ ಅಂಶ.
4: मेरे प्यारे देशवासियों, 7 अगस्त को हमारा देश नेशनल हैंडलूम डे मनाता है. इस अवसर पर हम अपने बुनकर भाई बहनों के कौशल और उनकी सृजनशीलता का उत्सव मनाते हैं. हमारे ये साथी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हैं. साथियों, हथकरघे से बना हर परिधान किसी न किसी क्षेत्र, समुदाय और इससे जुड़े असंख्य लोगों की कहानी को सामने लाता है. ये वो लोग हैं जो गर्व के साथ भारत की सांस्कृतिक विरासत को संजोने में जुड़े. ये दिन मेरा आग्रह है कि हम हस्तकला को प्रोत्साहित कर अपने बुनकर साथियों का सम्मान करें. आइए हम वोकल फॉर लोकल की भावना को और सशक्त करें. साथियों, आज देश में जिस तरह हैंडलूम को बढ़ावा दिया जा रहा है, उससे बड़ी संख्या में लोगों का जीवन बेहतर हो रहा है. पोचमपल्ली से पटना और कुथमपल्ली से कच्छ तक इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं. आज ऐसे कई लोग और समूह हैं जो हैंडलूम की हमारी गौरवशाली परंपरा को नई ऊर्जा और पहचान दे रहे हैं. कोई पोचमपल्ली इकत की सुंदर परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, तो कोई महिला बुनकरों को जोड़कर वूल प्रोडक्ट्स बना रहा है. कुछ लोग केरलम की पारंपरिक कसाऊ कला को संरक्षित कर रहे हैं. इससे हमारी माताओं बहनों को रोजगार भी मिल रहा है. साथियों, एक और विषय जिसका मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा वह है खादी. हम सभी जानते हैं कि खादी महात्मा गांधी को बहुत प्रिय थी. बीते कुछ वर्षों में खादी काफी लोकप्रिय हुई है. पिछले 12 वर्षों में इसकी बिक्री 6 गुना बढ़ी है. बिक्री का यह आंकड़ा अब 8,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच चुका है. मेरा आप सभी से आग्रह है कि आने वाले त्योहार में खादी का कोई न कोई, हैंडलूम का कोई न कोई, हैंडीक्राफ्ट का कोई न कोई प्रोडक्ट जरूर खरीदें.
2: तो साथियों, आपने सुना कि माननीय प्रधानमंत्री करघा दिवस का उल्लेख करते हुए इसके संदर्भ में बुनकर भाई बहनों के विशेष हितों का भी एक तरह से उल्लेख किया है. तो इस बारे में हम और जानते हैं. आज इस कार्यक्रम में बात करते हैं उस धागे की जो सिर्फ कपड़ा नहीं बुनता बल्कि भारत की विरासत, संस्कृति और लाखों परिवारों के सपनों को बुनता है. सामाजिक ताने बाने का हिस्सा वो धागा जो हमारी विरासत भी है और साथ ही हमारी जिम्मेदारी भी है. स्वदेशी आंदोलन से लेकर वैश्विक पहचान तक ये धागा भारत में और भारतीयता भर देता है. महात्मा गांधी ने चरखा चलाते हुए जन जन को जोड़ा और साथ ही स्वदेशी का महत्व बताया. स्वदेशी आंदोलन आगे बढ़ा और उसके बाद एक से एक बढ़कर उपलब्धि जो हमें हासिल हुई है और आज हम कहते हैं कि भारतीय वस्त्र की पहचान वैश्विक पहचान है, तो ये भी हमने हासिल की है अपने बुनकर भाई बहनों के परिश्रम से ही। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। डॉक्टर एम बीना, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी मैडम कि हमारा जो विभाग है और हमारा जो मंत्रालय है वो किस तरह से हमारे जो बुनकर भाई बहन हैं उनके लिए कार्य करता है।
3: ऑफिस ऑफ डीसी हैंडलूम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के अंडर
2: जी,
3: एंड उसका पूर्णतः लक्ष्य ये है कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द हैंडलूम सेक्टर। तो उसमें हमें हैंडलूम को भी बढ़ावा देना है और हैंडलूम के जो वीवर्स हैं उनकी भी मदद करना है, ये हमारा पूर्णतः लक्ष्य है
2: जी।
3: तो इसमें हमारे दो प्रधान कार्यक्रम है, एक तो नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसमें हम देते हैं एंड टू एंड सपोर्ट वीवर्स को, स्किलिंग देते हैं उनको, मार्केटिंग असिस्टेंस देते हैं उनको, करखे नए करखे देते हैं उनको, वर्कशीट्स दिया जाता है, तो उस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम हैं। दूसरा, हम तभी बुनाई शुरू करेंगे जब हमारे पास धागा होगा
2: जी।
3: तो सबसे एक बड़ा चैलेंज है बुनकर को कि धागा रॉ मटेरियल को आपूर्तिकरण के लिए, तो इसके लिए हमारा दूसरा स्कीम है रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम जिसके 15% प्राइस सब्सिडी और ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी। तो ये तो हमारे बड़े कार्यक्रम है जो हर स्टेट में चलाया जाता है, हर क्लस्टर में चलाया जाता है, तो इसी से हमारे वीवर्स को बहुत मदद मिलती है
2: जी। जब हम बात करते हैं मैम वीवर्स की, तो आमतौर पर देखा जाता है कि ज्यादातर बुनकर अपने पूर्वजों से सीखकर ये कार्य कर रहे हैं और बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते कई बार, तो उन्हें पता नहीं चलता कि सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे लिया जा सकता है। हम चाहेंगे कि आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से वो सीधे आपसे सुने कि ऐसी क्या योजनाएं हैं जिनका लाभ वो उठा सकते हैं।
3: तो हमारे जो भी स्कीम्स है वो अंततः वीवर का ही इसमें बेनिफिट होता है
2: जी।
3: जो वीवर ये नहीं जानते, काफी वीवर्स जानते हैं, लेकिन जो वीवर अभी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उनसे मुझे ये बोलना है कि आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, देखो एक वीवर को नॉर्मली क्या चाहिए, उनको तो पहले धागा चाहिए
2: जी।
3: तो धागे के लिए अगर आपको मदद चाहिए तो हमारा रॉ मटेरियल सप्लाई स्कीम के तहत दो तरह की सब्सिडी दिया जाता है। तो एक तो है आपका प्राइस सब्सिडी। प्राइस सब्सिडी उन धागों को दिया जाता है जो नेचुरल फाइबर्स है
2: जी।
3: जैसे कि कपास हो गया, सिल्क हो गया, जूट हो गया, लिनन हो गया, क्योंकि ये नेचुरल फाइबर्स है हम उनमें 15% प्राइस सब्सिडी देते हैं। जैसे कि अगर आप सिंथेटिक पे काम कर रहे हैं उसको भी हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन उसमें हम बस ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी देते हैं, माने आपको धागा मिल जाएगा मिल गेट प्राइस। तो ये है हमारा फर्स्ट प्रधान कार्यक्रम
2: जी।
3: तो दूसरा, आपका जो

0: घर का है अगर वो पुराना हो गया, या फिर अगर आप बहुत आउटडेटेड लूम पे काम कर रहे हैं तो आपको नया हथकर तो वो हम आपको दे सकते हैं हमारे क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत। दूसरा, बहुत सारे घरों में अब ये देखा जा रहा है कि घर नए बन रहे हैं तो घर में टीवी आ गया, सोफा आ गया, सब आ गया, अब हथकरघा के लिए जगह नहीं है
1: जी।
0: तो हम एक वर्कशेड का भी एक कार्यक्रम है जहां हम 1,20,000 तक वर्कशेड में मदद देते हैं, जिसका 90% सरकार की ओर से जाता है और 10% वीवर को बेयर करना पड़ता है। तीसरा है, हमारे बुनकर काम करते हैं तो उनको लाइट की जरूरत है
1: जी,
0: तो इसके लिए सोलार लाइटिंग का भी एक कार्यक्रम है जहां हम अप टू 15,000 सोलार लाइट के लिए भी देते हैं। तो ये अपने घरों में बैठकर ये तीन आपको मिल जाएंगे
1: जी।
0: लेकिन इसके अलावा हमें डिजाइन डेवलपमेंट करना पड़ता है, मार्केटिंग करना पड़ता है
1: जी।
0: तो इसके भी कार्यक्रम है। अब मार्केटिंग में हमारे बहुत सारे मेले लगते हैं, आपने सुना होगा गांधी बुनकर मेला जो जिला स्तर पर होता है, फिर राज्य स्तर पर होता है, और नेशनल हैंडलूम एक्सपो अपने दिल्ली खाड में भी देखा होगा, हमारे बुनकर भाई लोग आते हैं। तो इन सब के लिए मार्केटिंग असिस्टेंस के लिए एक तो अपना राज्य सरकार को भी हम पैसे देते हैं इसका आसूत्रण करने के लिए, तो इधर राज्य सरकार द्वारा वो अप्लाई करें, या फिर हमारा एक पोर्टल होता है दिल्ली हाट वगैरह, और जो भी नेशनल लेवल पे जो मेले होते हैं उसके एप्लीकेशन के लिए दे हैव टू अप्लाई थ्रू द नेशनल पोर्टल। ये हो गया मार्केटिंग। नाउ अब ये है कि आपको अपना जो प्रोडक्ट है उसमें देखो आज एक हैंडलूम बेच रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो जब तक बुनकर अपने प्रोडक्ट पे हैंडलूम मार्क नहीं लगाएगा तो हैंडलूम मार्क लगाने से जनता ये जान जाएगी कि ये ऑथेंटिक है
1: जी।
0: तो हैंडलूम मार्क के लिए भी प्रावधान है हमारे स्कीम में, हमारे लिए टेक्सटाइल कमिटी हैंडलूम ब्रांड का वो कार्यक्रम चलाती है। एंड कुछ ऐसे भी वीवर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं एंड जो इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं
1: जी।
0: तो उसके लिए भी प्रावधान है हमारा इंटरनेशनल मार्केटिंग स्कीम, तो वहां हमारा हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा इनका चयन होता है और उनको बाहर भेजा जाता है। और एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है हमारा अवार्ड्स
1: जी।
0: एक्चुअली ये जो 7 अगस्त है सारे वीवर्स इसको मनाते हैं क्योंकि उनको अवार्ड्स मिल जाते हैं उस पे। हमारे 2 अवार्ड्स है, एक तो संत कबीर अवार्ड और दूसरा है नेशनल अवार्ड। तो ये जो अवार्ड का कार्यक्रम जो बहुत हुनरशाली वीवर्स है उनके सपोर्ट के लिए ये अवार्ड वाला कार्यक्रम है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट जो सेक्टर है वेलफेयर ऑफ द वीवर्स
1: जी।
0: अब वेलफेयर में भी हमारे 2-3 हिस्से हैं, हमारा एक अम्ब्रेला स्कीम है और हम ये कोशिश करते हैं कि एंड टू एंड वीवर को मदद मिले। अब वेलफेयर में एक तो है हम इंश्योरेंस में हम उनका सपोर्ट करते हैं, तो 2 प्रधान हमारे इंश्योरेंस प्रोग्राम्स है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना
1: जी।
0: तो इन दोनों में हम जो जो वीवर को प्रीमियम देना होता है उसका एक इन सुरक्षा बीमा योजना हम पूरा केंद्र सरकार देता है, एंड इन जीवन ज्योति बीमा योजना इट इज अ शेयरिंग बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट
1: जी।
0: तो ये एक और है। दूसरा, अगर आप अवार्डी वीवर है और अगर आपके पास वो इनकम कम है तो आपको प्रति मास 8,000 रुपीज का असिस्टेंस मिलता है ओवर 60 ईयर्स
1: जी।
0: तीसरा है हमारा स्कॉलरशिप, अगर एक बुनकर के बेटे को टेक्सटाइल में पढ़ाई करनी है चाहे वो डिग्री लेवल पर हो, डिप्लोमा हो या फिर हायर स्टडीज हो, तो वी सपोर्ट अप टू 2 लाख पर ईयर फॉर अ वीवर स्टूडेंट, अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 2 चिल्ड्रन पर वीवर। तो ये हो गया हमारा वेलफेयर कार्यक्रम। और लास्ट में एक और कार्यक्रम है हमारा मुद्रा स्कीम। तो वीवर्स मुद्रा स्कीम में हम देयर इज अ प्रोविजन फॉर गिविंग मार्जिन मनी, देयर इज अ प्रोविजन फॉर गिविंग इंटरेस्ट सबवेंशन, देयर इज अ प्रोविजन फॉर गिविंग क्रेडिट गारंटी। तो मैंने बहुत कॉम्प्रिहेंसिव से स्कीम्स है, अगर बुनकर को ज्यादा इंफॉर्मेशन की जरूरत है हमारे हर राज्य में देयर इज अ बुनकर सेवा केंद्र
1: जी,
0: वीवर सर्विस सेंटर, वहां पर उनको ज्यादा जानकारी मिल सके
1: जी। यानी एक बुनकर के जीवन हैं सभी इन योजनाओं के माध्यम से आपने कवर करने की कोशिश की है और हर जगह कुछ ना कुछ मदद उपलब्ध करवाई जा रही है
0: जी।
1: ये रोचक जानकारी हमारे बुनकर भाई बहनों के लिए बहुत ही जरूरी थी और बातचीत हमारी जारी रहेगी। मैं यहाँ आपसे आपकी पसंद का एक गाना पूछना चाहूंगी ताकि हम श्रोताओं को सुनवा सकें।
0: मेरी मातृभाषा मलयालम है
1: जी,
0: लेकिन हिंदी के सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद है। जब मैं छोटी लड़की थी तब से ये विविध भारती में जो भी गाने आते हैं, तो एक्चुअली हिंदी जानने से पहले हिंदी के गाने मैं सुनती हूँ
1: जी।
0: और आज के दिन आई थिंक मैं ये बोलूँ कि मोह मोह के धागे आज के सब्जेक्ट कॉन्टेक्स्ट में बहुत रिलेवेंट है,
1: सच में।
0: आई विल रेकमेंड दैट।
1: और इससे हम ये भी समझ सकते हैं मैम कि जो विभाग आप संभाल रही हैं उससे आपका कितना मोह है ये धागे, लोगों के कल्याण के धागे।

0: तो इस प्यारे से गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं स्वदेशी आंदोलन से वैश्विक पहचान बनाने वाले उन धागों की जो हथकरघा से हम तक पहुंचते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के संदर्भ में ये हमारा एक विशेष कार्यक्रम है और साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उल्लेख किया दिवस का बुनकर भाई बहन जो हैं उनके कल्याण के लिए क्या योजनाएं हैं, इस बारे में हम जान रहे हैं हमारे विशेषज्ञ से। आज की मेहमान इस कार्यक्रम में है डॉक्टर एम बीना। आप प्रशासनिक अधिकारी हैं और साथ ही डेवलपमेंट कमिश्नर हैं हैंडलूम में। तो मैम, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि जब किसी भी चीज को प्रचलित करने की बात करते हैं तो भारत में हम युवाओं को जरूर अपने साथ जोड़ते हैं, क्योंकि व्यवहार में वो चीजें उन्हीं के माध्यम से प्रसार पाती हैं। ऐसे में क्या इस तरह की कुछ योजनाएं हैं जो कि शैक्षणिक स्तर पर हथकरघा से या बुनकरों से जोड़ रही हैं छात्रों को, विद्यार्थियों को?
1: आपने उठाया, देखो हम हथकरघा हमारी विरासत है, हैंडलूम में से इंटरनेशनली एक्सेप्टेड था एक जमाने में
0: जी।
1: लेकिन अब वो कम होता जा रहा है। लेकिन अगर ये लुप्त हो गया तो ये सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। तो ये नई पीढ़ी की ये
0: जी,
1: तो उसके लिए हमें क्या कर रहे हैं कि उसको पॉपुलराइज करने के लिए, एक तो हमने अपने ओर से कुछ शिक्षा संस्थान हमने स्टार्ट किए हैं। दीज आर द इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी
0: जी।
1: तो सेंट्रल गवर्नमेंट के 6 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजीज है और स्टेट गवर्नमेंट और 5 IHDs चलाते हैं। तो यहाँ पे जो शिक्षा दिया जाता है वो हैंडलूम पे और टेक्सटाइल पे बहुत अच्छे चलता है, डिग्री भी का भी कोर्स है। तो ये एक ओर से हम ये कर रहे हैं। दूसरा, हमारा जो बुनकर सेवा केंद्र है तो उनका हमेशा ये प्रयास रहता है कि आसपास जो भी जनरल कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, तो वहाँ के बच्चों को जाके वो क्राफ्ट डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ताकि वो देख सके। को बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कभी हथकरघा को देखा ही नहीं है, कैसे चलता है वो उनको मालूम ही नहीं है। लेकिन आई थिंक ये जो हम बात कर रहे हैं आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस लेता है कि आज का जो जमाना है वो सस्टेनेबिलिटी सर्कुलरिटी के ओर चल रहा है एंड एनवायरमेंटली बहुत कॉन्शियस है। तो ये चाहते हैं कि देखो हमारे जमाने में किसी का पहना हुआ हम पहने की वो सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन आज ये ऐसा जमाना आ गया कि जेंसीज थिंकिंग ऑफ रीयूजिंग कंजर्वेशन, तो बहुत उनकी सोच में क्रांतिकारी चेंजेस आ रहे हैं। द मैसेज दैट वी आर गिविंग टू द यूथ इस हैंडलूम में जो बनता है इट इज कार्बन न्यूट्रल, बिकॉज वीविंग में तो हम पावर यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है इट इज वेरी सस्टेनेबल, इट इंटेग्रेट सर्कुलरिटी। तो ये मैसेज हम देना चाह रहे हैं अपने यूथ को, खासकर हमारा एक प्रोग्राम भी है
0: जी।
1: तो वीव द फ्यूचर में हम जो अपसाइक्लिंग रिसाइक्लिंग में जो ब्रांड्स हैं जो हैंडलूम में काम करते हैं हम उनको मिला के दिल्ली हाट में कभी क्राफ्ट म्यूजियम में, ताकि ये लगातार ये कॉन्वर्सेशन चलता रहे कि हैंडलूम इज इंटेग्रल टू सस्टेनेबिलिटी। तो ये हो गया द सस्टेनेबिलिटी कॉम्पोनेंट ऑफ अट्रैक्टिंग यूथ। बट दूसरा, जब तक हम साड़ी पर ही रहेंगे तो यूथ थोड़ा सा इसमें आने से कतराएंगे। तो इसीलिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने प्रोडक्ट्स को डाइवर्सिफाई करें। तो हमारे मेरे बुनकर भाइयों से ये रिक्वेस्ट है कि आप साड़ियां बहुत अच्छे बनाते हैं, मैं बहुत पसंद भी करती हूँ, लेकिन जमाना आ गया है कि आप अपना फैब्रिक को नए तरीके से प्रेजेंट करें, उसमें जो आज के जेंसी पसंद करते हैं
0: जी,
1: तो उस तरह का भी आप काम करें। हमारे विभाग से डिजाइनर्स मौजूद हैं क्लस्टर लेवल पे, तो उनकी मदद लेके आप नया काम करने की भी कोशिश करें
0: जी।
1: और दूसरा, मैं से जो युवा पीढ़ी है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आपको अगर वीविंग नहीं भी आती हो लेकिन अपने पिताजी से अपने माताजी से उनका जो हुनर है वो अंडरस्टैंड करे और उसको एटलीस्ट इंस्टा पेज तो वो बना सकते हैं
0: जी,
1: वो एटलीस्ट ऑनलाइन मार्केटिंग तो वो कर सकते हैं। तो ये मेरी विनती है देश

0: की युवा पीढ़ी से।
1: जी, और कुछ समय पहले हमें एक छात्र से बात करने का अवसर मिला था, तो उन्होंने यही बताया कि NID नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग, उन्होंने कहा कि इस तरह के संस्थान बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि जब फैशन शोज होते हैं, हम फैशनेबल कपड़े बना रहे होते हैं, तो उनके पैटर्न्स में भी हम इस तरह की वीविंग्स यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा आपने कहा कि जो बुनकर हैं उनके बच्चे भी इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं।
2: एक्चुअली आपने अच्छा, देखो दरअसल निफ्ट नाम की संस्था है, तो निफ्ट के साथ हमने एक बहुत अच्छा एक प्रोग्राम हम चलाते हैं, यह है क्राफ्ट क्लस्टर इनिशिएटिव। तो निफ्ट का हर एक बच्चा किसी न किसी आइदर क्राफ्ट क्लस्टर में जाते हैं, वो समझते हैं कि ये कैसे किया जाता है, एंड कुछ इनपुट्स वीवर को भी मिलता है, कुछ सीख बच्चे को भी मिलता है। एंड इस एसोसिएशन से हमने ये देखा कि एक बच्ची थी जो गुजरात में निफ्ट में पढ़ी थी, तो उसके बाद After studying, she has started an e-commerce portal for all the weavers.
1: जी,
2: and इतना अच्छा उसका turnover आज आ गया है, इतना successful हो गया है. This is such a lovely example कि बच्चे जब युवा, the young blood and innovation comes into the picture, it really transforms the entire sector.
1: जी, बिल्कुल. तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे युवा साथी जो इस समय हमें सुन रहे हैं, वो ये समझेंगे कि उनकी ऊर्जा की जरूरत हमारे बुनकर भाई बहनों को भी है और उनके नए विचारों की जरूरत भी है। तो मैम, इसी मोड पर आपकी पसंद का एक और गाना,
2: हमारे केरला से एक बहुत मशहूर सिंगर है येशुदास, केरला में तो वो मशहूर है ही, लेकिन उनके जो हिंदी के गाने हैं वो भी बहुत पॉपुलर है
1: जी।
2: तो उनका एक गाना है मधुबन खुशबू देता है, बहुत पसंदीदा गाना है।
1: बहुत ही अच्छा गाना आपने चुना है, यही गाना हम सुनवा रहे हैं अपने श्रोताओं को।

0: इस प्यारे से गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एम बीना, आईएएस ऑफिसर हैं मैम और साथ ही डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, विकास आयुक्त हैं हथकरघा की। और आज हम बात कर रहे हैं स्वदेशी वैश्विक पहचान तक पहुंचे उन धागों की जो हमारे बुनकरों को समाज से जोड़ते हैं और समाज के अलग अलग वर्गों को भी आपस में जोड़ते हैं। अभी हम बात कर रहे थे मैम, तरह से हम ट्रेंड पे ला सकते हैं अपने हैंडलूम को। आजकल जब युवा आपस में मिलते हैं या पहले भी हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है, हमारे घर अतिथि आते हैं या हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ भेंट हम देते हैं, ऐसे में आप क्या कहेंगे हम हथकरघा से बुने हुए उत्पादों को कैसे शामिल कर सकते हैं?
1: इसका सबसे अच्छा उदाहरण हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं।
0: जी,
1: वे जब भी बाहर जाते हैं या फिर बाहर में आते हैं तो हमेशा उनका गिफ्ट जो है आइदर हैंडलूम का होता है या फिर हैंडीक्राफ्ट का होता है। तो हम तो बोलते हैं कि हमारा सबसे अच्छा ब्रांड एम्बेसडर अपने प्रधानमंत्री जी ही है।
0: जी,
1: तो वो एक्चुअली अच्छा उदाहरण है। जब भी हमें तोहफा देना होता है
0: जी,
1: तो मेरा ये रिक्वेस्ट है, बहुत सारे कंपनीज हैं इंडिया में जो दिवाली पर गिफ्टिंग करते हैं, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग करते हैं, तो अपना जो ट्रेडिशन है उसको प्रिंट करें। तो कुछ लोग करते भी हैं एंड कुछ ऐसे भी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने CSR के द्वारा कंपनीज खड़े किए हैं या फिर संस्थाएं खड़े किए हैं फॉर इंडियन हैंडलूम्स, चाहे वो आदियम हो चाहे तनेरा हो, तो ऐसे भी प्रयास हो रहे हैं। बट गिफ्टिंग के लिए दिवाली अब आने को है तो अभी से आप अपना प्रोक्योरमेंट शुरू कीजिए, अपना कहने हम जो भी करें अपने आइडेंटिटी को याद करें। जब हम आइडेंटिटी को याद करेंगे, अपने रूट्स को याद करेंगे, तो हथकरघा तो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है।
0: जी, ऐसे में मैम हमारे संस्थान का भी मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगी। हमारे यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत होते हैं लेकिन हम ये अतिथि होते हैं उन्हें हम अंगवस्त्र जो है वो हैंडलूम से दे और सिर्फ पौधा भेंट करें, बाकी जो प्रतीक चिन्ह है उनके अतिरिक्त।
1: बहुत अच्छा,
0: तो ये भी हम आपस में ध्यान रख सकते हैं। और जेंजी जो है, जैसा कि मैम ने कहा कि बहुत तेजी से आप चीजों का प्रसार करते हैं, तो ऐसे में जो अपनी पहचान है, हर राज्य के अपने अलग ऐसे धागे हैं जिन पर हमें गर्व है, हर राज्य का अलग पैटर्न है, तो हम उसके बारे में जानें और उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। मैम हम जब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की बात करते हैं ऐसे में इस बात पर भी विशेष ध्यान देते हैं कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहुंचे और हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम हो, ऐसे में क्या इस तरह की नीतियां हैं कि हमारा हैंडलूम विदेशी बाजारों में भी अपनी पहचान भी बनाए रखे और ज्यादा विस्तृत पहुंचे?
1: हैंडलूम का जो सस्टेनेबिलिटी एंगल है वो मोर देन इंडिया, एक्चुअली फॉरेनर्स उसको ज्यादा

0: ऑफ द कार्बन फुटप्रिंट. तो ये जो है एंड इसका सर्टिफिकेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देखो इंटरनेशनल मार्केट्स अब पूरी तरह दे आर लुकिंग एट सर्कुलैरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी. खासकर यूरोप में जो देश है, यूके जो है, वो बहुत इस पर इंसिस्ट करने वाले हैं इन द कमिंग ईयर्स. तो अभी एक्सपोर्टर्स आर ऑल्सो कॉन्शियस. हाल ही में फायरटेक्स हुआ था जो हमारा एक बहुत बड़ा इवेंट था जो एक्सपोर्ट पे फोकस करता था. तो वहां पर भी ये बार बार हर मीटिंग में ये दोहराया गया कि सर्कुलैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ द चैलेंज बिफोर अस इज टू इंटेग्रिटी इनटू द हैंडलूम. तो इनहेरेंटली सस्टेनेबल है लेकिन उसको सर्टिफिकेशंस, क्वालिटी चेकिंग एंड वो एक्सपोर्टेबल लेवल तक उसको लेके आना है. तो हैंडलूम एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इसमें बहुत काम कर रहे हैं. एंड हम ये भी अभी एक नेक्स्ट ईयर फ्रांस में एक बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है, प्रीमियर विजन. तो इंडिया हैज़ द हैंडलूम डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया इज नाउ अ पार्टनर फॉर प्रीमियर विजन एंड वी विल बी शोकेसिंग इट बिफोर एन इंटरनेशनल ऑडियंस कि हमारा हैंडलूम क्या है, विरासत क्या है, प्लस उसका सस्टेनेबिलिटी एंगल क्या है.
1: एक बड़ी समस्या आजकल व्यवहारिक तौर पर ये आती है मैम कि घर में आम तौर पर जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके पास भी, बच्चों के पास बहुत सारे कपड़े होते हैं और ऐसे में फैशन भी तेजी से बदलता है तो हमारा वार्डरोब चेंज होता रहता है. एक चुनौती होती है कि जो पुराने कपड़े हैं जो पहनने की स्थिति में है उनका हम क्या करें. क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है कि अगर हथकरघा के उत्पाद हैं तो वो कहीं उचित माध्यम से पहुंचाए जा सकें के बजाय इसके कि हम उन्हें फेंके या किसी को दें.
0: एक्चुअली ये रीयूज का कल्चर, रिसाइकलिंग का जो कल्चर है, तो हाल ही में हमने एक इवेंट किया था वीव द फ्यूचर. तो वीव द फ्यूचर में हमने क्या किया, वी केप्ट अ बॉक्स ताकि आपके जो यूज्ड कपड़े हैं आप वहां दे दीजिए. And we collected used कपड़े and we started, it is given to our recycling centers. तो अभी ऐसे प्रयास चल रहे हैं हमारे जो cities में, कुछ ऐसे चल रहे हैं. एंड हमने एक ऑक्शन भी किया था जो हमारा कुछ सीनियर ऑफिशियल्स ने कुछ कपड़े डोनेट किए थे. तो उसका हमने ऑनलाइन ऑक्शन भी किया था जो भी बहुत सक्सेसफुल था. एंड खासकर हैंडलूम्स का इससे जो मिलता है कि ऐसे अगर रिसाइकल धागे होते हैं वो नॉर्मली जो बड़े मशीन में वो चलेगा नहीं, द बिग मशीन में वो ज्यादा ब्रेकेज और श्रिंकेज होता है तो मोर सूटेबल है. तो इसलिए हैंडलूम एंड ये रिसाइकलिंग सब साथ में लेके चलते हैं. एंड वीव द फ्यूचर के अभी तक हमने 4 एडिशन किए हैं. अब ये 5th एडिशन विल बी लॉन्च्ड अलोंग विद द नेशनल हैंडलूम डे.
1: जी, हमारी एक ऑब्जर्वेशन ये भी है जैसे गांधी स्मृति और राजघाट पर जो संस्थान है वो चरखे का उपयोग अभी भी करते हैं खादी को बढ़ावा देने के लिए और बच्चों को ये सिखाने के लिए कि कैसे काता जाता है, कताई क्या होती है, कतान किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है. क्या इस तरह की एग्जीबिशंस होती हैं जहां पर वॉलेंटरली जाकर युवा जो हैं वो सीख सकें कि हथकरघा कैसे चलाना है भले ही वो उनका पेशा नहीं है.
0: एक्चुअली आपका सजेशन बहुत अच्छा है. एंड अभी सेंट्रल कॉटेज एम्पोरियम में हमारा एक एग्जीबिशन है द वीव्स ऑफ इंडिया. तो वहां पर वी हैव सेट दी स्मॉल लूम्स, हम उसको टॉय लूम्स या एक्सपीरियंशियल लूम्स हम बोलते हैं, बहुत छोटे से लूम्स है. तो हम वहां बहुत इंटरेस्ट भी है, छोटे बच्चे महिलाएं सब जाके ट्राई आउट कर रहे हैं. देखो वो इतना आसान भी नहीं है, द एक्चुअल जो हथकरघा है इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स. बट ये सिंपल थिंग ऑफ यू नो जॉइनिंग अ वार्प एंड वेफ्ट जिससे कपड़ा निकलता है वो एक्चुअली हम भी कर सकते हैं. तो उसके लिए ऐसे एक्सपीरियंशियल चीजें हम अपने जो एग्जीबिशंस या एक्सपोज होते हैं हम उसमें वो शामिल कर रहे हैं.
1: जी, उसमें शामिल किया जा रहा है. आमतौर पर ये होता है हैंडलूम पहनना सभी चाहते हैं और हैंडलूम की जो साड़ियां होती हैं बहुत ही गरिमापूर्ण, बहुत ही सुंदर होती हैं, लेकिन क्योंकि वो हाथ से तैयार की गई हैं और बहुत लंबा समय लगा है बुनकर को उसे तैयार करने में तो इसलिए वो अक्सर महंगी भी होती हैं. की वो इस तरह की योजनाओं की है जिनका लाभ बुनकर उठा सकते हैं. क्या जो को भी हैंडलूम खरीदने पर कुछ विशेष प्रोत्साहन मिल सकता है?
0: एक्चुअली मिनिस्ट्री का ये थॉट है कि कस्टमर को, हालांकि कुछ राज्य सरकार सब्सिडी दे रहे हैं
1: जी,
0: बट हमारा ये यू नो व्हाट वी आर रिक्वेस्टिंग द कंज्यूमर्स इज टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट. देखो जब हम एक बार देखें कि ये कैसे बनता है
1: जी,
0: एक बार एक बुनकर के घर में जाएंगे आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, इस यू नो इंक्रीज प्राइस देने में कोई हिचक नहीं होगी. तो द स्टोरी ऑफ द वीवर, जब आप ये समझ सके एक प्रोडक्ट पे अगर इसमें QR कोड स्कैन करने पे आपको मालूम पड़ रहा है कि ये कहाँ से आ रहा है, कौन से गांव से आ रहा है, वहां से एक बुनकर की कारीगरी है, देखो, हम सोचते हैं कि वीविंग इज इजी, इट इज नॉट इजी।

0: जी,
1: इट इज एडवांस्ड मैथमेटिक्स. मैंने ये जो वार्प एंड वेफ्ट का जो हिस्सा है, एंड उसमें देखो वार्प एंड वेफ्ट तो हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें डिजाइन बनाने के लिए द काइंड ऑफ मेंटल मैथमेटिक्स दैट हैज टू बी डन इज रियली कॉम्प्लेक्स. तो माय पॉइंट हियर वुड बी कि हमें खरीदना चाहिए. एंड जो एक्चुअली वीवर को सीट एज अ प्रीमियम आर्टिकल, सो दैट वी रीच द प्रीमियम मार्केट, एंड ताकि वीवर को एंड ऑफ द डे वीवर को अच्छा वेजेस मिलना चाहिए. नाउ एज फार एज अ कस्टमर इज कंसर्न, अगर आप वीवर से डायरेक्टली खरीदेंगे तो यू विल गेट इट एट अ रीजनेबल प्राइस. अगर बीच में मिडल मैन आ जाए, बीच में एक मार्केटिंग एजेंसी आ जाए, तो प्राइसेस ज्यादा सा इंक्रीज होगा. तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि हम जो मेलाएं लगाते हैं, जब भी एक अपॉर्चुनिटी आ जाए, जब आप वीवर से डायरेक्टली खरीद सके, तो आप उसका लाभ उठाएं. दूसरा, मंत्रालय ने एक वेबसाइट बनाया है indiahandmade.com. इंडिया हैंडमेड एक ऐसा पोर्टल है जहां वीवर खुद अपना डालता है, वीवर पुट्स हिज प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, तो वहां पर भी आपको बहुत रीजनेबल रेट्स मिल जाएंगे. तो इन सुविधाओं का आप इस्तेमाल करें.
0: जी, एक अनुभव मेरा इस बारे में बहुत अच्छा रहा कि जब हम कहीं घूमने जाते हैं, बहुत सारे ट्रैवल एजेंसीज में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं कि वो जो स्पॉट रखते हैं घुमाने के लिए, साइट सीइंग के लिए ले जाते हैं, उसमें उस जगह के बुनकरों को भी शामिल किया जाए. तो हमने एक इस तरह का दौरा किया और उसमें हमने ये जाना, जैसे अभी आपने कहा कि कितना कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है, उसमें बुनकर ने हमें बताया कि जो हमारा राज्य का पेड़ है इसमें लगाते हैं, जो हमारा राज्य का पक्षी है हम उसकी छवि इसमें देते हैं, और इस तरह से हम अपने राज्य की सेवा कर रहे हैं अपना काम करते करते. तो ट्रैवल एजेंसीज भी इसमें, यहाँ आप क्या सोचती हैं इस बारे में?
1: बहुत अच्छा सोच है, बिकॉज देखो टूरिज्म एंड हैंडलूम
0: जी
1: का बहुत अच्छा मेल हो सकता है. तो हमारा एक कार्यक्रम भी है, यह है क्राफ्ट टूरिज्म विलेज.
0: जी,
1: तो क्राफ्ट टूरिज्म विलेज में हम ये करते हैं कि जहाँ टूरिस्ट फुटफॉल है, हैंडलूम का क्लस्टर है, हम उसको लिंक करते हैं, लिंक करते हैं एंड वहां, ताकि टूरिस्ट वहां जा सके, वीवर के घर जा सके, वीविंग का कोई एक्सपीरियंस ले सके, एंड एक कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर हो, उनका मार्केटिंग भी हो.
0: जी,
1: तो अभी देश में हमारे 6 क्राफ्ट हैंडलूम विलेजेस ऑलरेडी चालू हैं और 3 में अभी काम चल रहा है. तो दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड इनिशिएटिव, क्योंकि टूरिज्म का इंटेग्रल पार्ट है ट्रेडिशन एंड हेरिटेज. आपने सही पहचाना कि देखो जो धागा यूज किया जाता है, जो मोटिफ करते हैं, जो रंगाई करते हैं, मतलब एवरीथिंग, तो इट इज सो इम्पोर्टेंट कि हम उसको मेंटेन करें, उसको चेरिश करें, उसको आगे लेके जाए.
0: जी, तो इसी मोड पर मैम आपकी पसंद का एक और गाना.
1: अभी एक रिसेंटली एक मूवी आया था कारवा
0: जी,
1: तो जहाँ हमारा एक यंग स्टार है दुलकर, तो जो कि ममूटी जी बहुत रिनाउंड मलयालम एक्टर है, उनका बेटा है दुलकर, एंड देयर इज अ वेरी नाइस सॉन्ग इन दैट, एक छोटा सा फसाना
0: जी,
1: वो प्ले करिए.
0: जी बिल्कुल, यही गीत सुनवाते हैं.

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस गाने के बाद पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज कार्यक्रम में हम अपने बुनकरों की दिनचर्या को जान रहे हैं, उनके जीवन की उपलब्धियां भी समझ रहे हैं और उनके संघर्ष भी, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं स्वदेशी आंदोलन से वैश्विक पहचान बनाने वाले हमारे देसी धागों की राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के संदर्भ में। और कार्यक्रम में आज हमारी मेहमान हैं आईएएस ऑफिसर डॉक्टर एम बीना, आप डेवलपमेंट कमिश्नर हैं हैंडलूम से। मैम, अभी हमने बात की कि किस तरह से हम युवाओं को जोड़ सकते हैं हैंडलूम से और किस तरह से जो बुनकर हैं वो भी जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ उठा सकते हैं। यहाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अभी टेक्नोलॉजी से हम बहुत सारी चीजें आसानी से पा रहे हैं, तो कैसे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं हैंडलूम को बढ़ावा देने के लिए?
1: एक्चुअली हैंडलूम जो है वो ट्रेडिशनल है, बट ये नहीं है कि उसमें टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन नहीं है। एक्चुअली हैंडलूम को स्ट्रेंथन करने के लिए वी शुड बी यूजिंग टेक्नोलॉजी, तो उसमें एक दो प्रयास हमारे मिनिस्ट्री की ओर से चल रहा है। तो एक तो है कि हैंडलूम टेक्नोलॉजी के लिए एक संस्था का अभी हाल ही में उसका इनॉग्रेशन हो रहा है
0: जी।
1: वो हैंडलूम टेक्नोलॉजी जो हम IIT दिल्ली के साथ हम कर रहे हैं, ताकि वो नई टेक्नोलॉजी में, बेटर लूम्स में, बेटर एर्गोनॉमिक्स में, नए डिजाइन में, नए डाइस में, इन सब में रिसर्च करे और उस रिसर्च का जो नतीजा है हमारे व्यूअर्स को दे। दूसरा, हम फ्रॉम द यूथ एंड द स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया हम एक लूम हैकाथॉन हमने अनाउंस किया था
0: जी।
1: काफी उसमें रिस्पॉन्स भी आया है एंड दैट इज ऑल्सो वन वे जहां हम अच्छे आइडिया समेट सके ताकि हम हैंडलूम सेक्टर में यूज करें
0: जी।
1: तीसरा है, हमने अभी एक पायलट बेसिस पे स्टार्ट किया है। देखो, ये ट्रेसेबिलिटी समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट इन हैंडलूम सेक्टर कि एक्चुअली वो हैंडलूम पे बना है, कहाँ बना है, कैसे बना है। तो इसके लिए एक IoT डिवाइस है जो लूम पे लगाया जाता है एंड ये जो डिवाइस है वो एक तो वो GI टैग्ड है, तो ये कहाँ पे बुन रहा है वो ऑटोमेटिकली वो डेटा आ जाता है। दूसरा, जो लूम का जो मूवमेंट है वो उसको कैप्चर करता है। देखो, अगर पाउडलूम में है तो मूवमेंट इज एंटायरली यूनिफॉर्म, अगर हाथ से बन रहा है तो एक मूवमेंट में ज्यादा फोर्स होगा, एक में कम होगा। तो इन अ वे इट इज ऑथेंटिकेशन, इन अ वे इट इज जियोटैगिंग एंड कितना धागा बन रहा है एक दिन, वो पूरा डेटा उसमें कलेक्ट किया जा रहा है। तो ये भी हम एक बड़े स्तर पर पायलट हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा एंड अब नए फेज में हम 10,000 ऐसे सच डिवाइसेस हम लेके आ रहे हैं
0: जी। हथकरघा घाट भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं जी।
1: हैंडलूम हार्ट इज आवर ड्रीम प्रोजेक्ट जहां हम एक अच्छा सा एक मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स जैसे इन दिल्ली वी आर वर्किंग फॉर दैट, ताकि एक अच्छा सा रिटेल स्पेस मिले जो हमारे हैंडलूम के बुनकर को, प्लस जो स्टार्टअप्स यहाँ काम कर रहे हैं, जो निफ्ट के यंग डिजाइनर्स पास आउट हो रहे हैं, उन सबको मिला के हम एक हैंडलूम हाट का भी आयोजन कर रहे हैं
0: जी। क्या बुनकरों से संवाद का कोई सीधा तरीका है जहां वो अपनी समस्याएं भी रख सके? कोई ऐसा मंच उपलब्ध करवाया गया है?
1: चौपाल
0: जी,
1: तो हमारे सारे वीवस सर्विस सेंटर्स फील्ड पे जाते हैं एंड क्लस्टर लेवल पे चौपाल कराते हैं। तो एक और तो हम उनको ट्रेनिंग देते हैं एंड जैसे कि आपने सुना कि बहुत सारे स्कीम्स हैं, लेकिन हर बुनकर को ये जानकारी नहीं है। तो हमारे जो कर्मचारी हैं वो गांव में जाते हैं, चौपाल कराते हैं, स्कीम के बारे में बता, तो वहीं से एप्लीकेशन भी ले लेते हैं। तो दूसरा, हम जो भी हमारे बड़े ट्रेनिंग्स होते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है समर्थ ट्रेनिंग, तो समर्थ ट्रेनिंग के तहत वीवर को एक अच्छा एक है कि उसको वेज कॉम्पेंसेशन मिलता है। कभी कभी ये लोग ट्रेनिंग पे नहीं आते क्योंकि एक दिन का उनका वेजेस चला जाता है, तो अंडर द स्कीम वी प्रोवाइड फॉर वेज कॉम्पेंसेशन। तो समर्थ हमारा एक बहुत सक्सेसफुल स्कीम है हैंडलूम सेक्टर में, तो वहां भी दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस विद दीस मैटर्स एंड हैंडलूम दिवस जैसे जो बड़े सेलिब्रेशंस होते हैं, तो वो तो हर क्लस्टर में, हर WC लेवल पर, राज्य स्तर पर, नेशनल स्तर पर, ये सब दीज आर प्लेसेस वेयर वी कम टूगेदर। अभी हाल ही में बजट में एक नया स्कीम अनाउंस हुआ है, हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम, तो उसको बनाने के लिए काफी चर्चाएं हुई एट द फील्ड लेवल, एट द स्टेट लेवल, जो इसमें विशेषज्ञ हैं उनसे भी काफी बातचीत हुई है। तो ये हमेशा एक ऐसे वार्तालाप का हम स्वागत करते हैं ना मन रख सके हमारे पास
0: जी। इस विषय में हम और जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवा रहे हैं एक प्यारा सा गाना।

इस प्यारे से गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर एम बीना, आईएएस ऑफिसर हैं मैम और साथ ही डेवलपमेंट कमिश्नर हैं, विकास आयुक्त हैं हथकरघा की। और आज

0: बात कर रहे हैं स्वदेशी आंदोलन से वैश्विक पहचान तक पहुंचे उन धागों की जो हमारे बुनकरों को समाज से जोड़ते हैं और समाज के अलग अलग वर्गों को भी आपस में जोड़ते हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे हथकरघा से जुड़े हुई जो आर्थिक पक्ष है उसकी भी, साथ ही सरकार ने जो योजनाएं उपलब्ध करवाई हैं उनकी, और सामाजिक पक्ष भी। अब बात करते हैं हथकरघा से जुड़े हुए स्वास्थ्य पक्ष की। हम कहते हैं कि हैंडलूम जो है, ये जो धागे हैं, ये स्किन फ्रेंडली है और स्किन डिजीज से हम बच सकते हैं अगर हम सही तरीके के कपड़े पहने, वो फैब्रिक जो है वो ठीक हो। इस बारे में मैम क्या कहेंगी?
1: हैंडलूम जो बनता है वो ज्यादातर नेचुरल फाइबर्स पे बनता है, एंड क्योंकि ये नेचुरल फाइबर्स पे बनता है एंड मोस्ट ऑफ देम यूज नेचुरल डाइस ऑल्सो, आजकल बहुत नेचुरल डाइस का भी यूज हो रहा है
0: जी।
1: तो हमारा एक स्टार्टअप है जो साउथ में है, तो उन्होंने एक योगा मैट बनाया है हैंडलूम पे। तो नॉर्मली हम योगा मैट जो जो चाइनीज इंपोर्टेड है वो यूज करते हैं, मैंने योगा करते हैं एंड उसी के फ्यूम्स हम इनहेल करते हैं, लेकिन ये कंपनी जो है वो हैंडलूम योगा मैट बनाते हैं ताकि जब हम योगा करें और पसीना निकले जो हम फ्यूम्स इनहेल करें वो बहुत हर्ब्स जैसे है उसमें मिलाया जाता है। अगर हैंडलूम का भी बेडशीट यूज करें, हैंडलूम के कपड़े यूज करें, वो डेफिनेटली वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। ये नेचुरल कलरिंग भी आ गया है ताकि वो और बेटर बन जाए
0: जी। युवा किस तरह से और ज्यादा यूज कर सकते हैं हैंडलूम प्रोडक्ट्स का, ऐसे में सोवनियर इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर उस इंडस्ट्री से हमें लोग इस समय सुन रहे हैं तो उनके लिए क्या आपका मैसेज है?
1: तो हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट के बहुत अच्छे सोवनियर बन सकते हैं एंड उसको हमें ज्यादा यूज करना है। एंड यूथ के लिए एक्चुअली मैं अपने बुनकर भाइयों को भी बोलती हूँ कि अब यूथ के लिए जो कपड़े बनने हैं, तो हाल ही में हमने एक डिजाइनर कॉन्क्लेव के लिए एक कॉन्टेस्ट जैसे रखा। देश में जो 72 क्लस्टर्स से जहाँ हम क्लस्टर डिजाइनर्स थे, हमने एप्लीकेशन मंगवाए एंड इतने अच्छे नए तरीके के ड्रेसेस आए हैं। मैंने जो हैंडलूम में पहले तो हम ओनली साड़ीज देखते थे, लेकिन अब इतना इनोवेशन अब चल रहा है ताकि युवा भी इसमें जरूर आकर्षित होंगे
0: जी। और हम तो अपने सभी श्रोताओं से ये कहेंगे ही कि जैसा कि मैम ने भी कहा कि जब भी कभी कोई उपहार दे, कोई भेंट दे किसी को, उसमें हैंडलूम आइटम्स जरूर रखें। जब कभी हो तब भी आप कोई अच्छा सा गिफ्ट लें तो उसमें भी ये याद रखें कि हमारी जेब से जो पैसा निकलता है वो देश में घूमे और सही हाथों में पहुंचे, तो हमारा छोटा सा उपहार भी बुनकर जो भाई बहन हैं उनकी जो अर्थव्यवस्था है उसमें एक बड़ा हिस्सा होता है, तो उनका भी ध्यान रखा जाए। चलते चलते मैम क्या संदेश आपका हमारे सभी श्रोताओं के लिए?
1: तो मेरा ये रिक्वेस्ट है कि कम से कम 7 अगस्त को तो आपको पहनना ही है हैंडलूम, तो आपको हर भारतीय को 7 अगस्त को हैंडलूम पहनना है
0: जी।
1: और उससे ऊपर हम हैंडलूम को जीवन का हिस्सा बनाए, ये बुनकर की जो कला है उनकी जो जो सर्गात्मकता है उसको आप प्रोत्साहन दे, उनका हौसला बढ़ाए एंड सबसे ऊपर हमारी विरासत को हम अपनाए, उस पर फकर करे, उसको पूरी तरह से अपनाए
0: जी।
1: तो हैंडलूम को पूरी तरह से सपोर्ट चाहिए, उनको प्यार चाहिए और जीवन में उसका हिस्सा बना दीजिए
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। और हम कहेंगे कि ये वो संस्कृति और ये वो विरासत है जो पहनी जा सकती है, जिसे हम हर जगह अपने साथ ले जा सकते हैं, अपने देश के कोने कोने में भी और साथ ही भारत से बाहर भी। आप सुन रहे थे पोस्ट बॉक्स नंबर 111। आज इस कार्यक्रम में हमारी विशेषज्ञ थी, हमारी अतिथि थी डॉक्टर एम बीना, IAS ऑफिसर आप और डेवलपमेंट कमिश्नर हैं हैंडलूम से। मैम ने हमसे बात की और बहुत सारे नए विचार भी हमें पता चले और साथ ही ऐसी योजनाओं के बारे में भी हमने जाना, हमारे तौर से बुनकर जो है उनके लिए है, उनके कल्याण के लिए है। मैम आप हमारे स्टूडियो आई, आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: बहुत धन्यवाद आपका भी, ये टाइम दिया, अपने देश के बुनकरों को आपने याद किया, थैंक यू।
0: तो कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान और कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स के साथ मैं नीलम मलकानिया पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर
3: ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
4: ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗಾಯಕರು,
3: ಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತಿಗಳು,
4: ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತಗಾರರು,
3: ಹೀಗೆ 10 ಹಲವು ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

0: this historic day.
1: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन दो दिवसीय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की यात्रा पर हैं। इधर दिल्ली में अभियान के हिस्से के रूप में लोकसभा में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने मालवीय नगर में पंडित मदन मोहन मालवीय के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद पिलांजी गांव से ग्रेटर कैलाश तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। संवाददाताओं से बातचीत में सुश्री स्वराज ने कहा कि ये स्वतंत्रता दिवस विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अपनी स्वाधीनता का 80वां वर्ष मना रहा है।
2: भारत अपना 80th इंडिपेंडेंस डे मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने आज से एक सप्ताह की मुहिम शुरू करी है, जहां पर हम हमारे राष्ट्र के नायक, जितने भी हमारे शहीद स्मारक हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, लोकल RWAs, MWAs और स्थानीय निवासियों के साथ जाकर, हमारे स्वच्छता वॉरियर्स के साथ यहां पर आकर स्वच्छता का अभियान भी शुरू करेंगे और पुष्पांजलि का भी कार्यक्रम करेंगे।
1: केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में भी आज से हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत सभी 20 जिलों में सप्ताह भर के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय सुनिश्चित करना है। गृह मंत्री ने गोरीमेडू स्थित पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय के मैदान में पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान करने के समारोह में ये बात कही।
3: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है। ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
1: श्री अमित शाह ने पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करने पर बधाई दी।
3: राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो, मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं।
1: राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित होने की इस उपलब्धि के साथ ही पुदुचेरी देश का 18वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जिसे पुलिस बल को दिए जाने वाले इस सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और देश की महिलाओं के माथे के सिंदूर की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। रक्षा मंत्री ने ये बात नई दिल्ली के बेस अस्पताल में सिंदूर महारक्तदान यात्रा के शिविर उद्घाटन के अवसर पर कही। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एजेंसी के अनुसार आरोपी को कल मलप्पुरम जिले के मंजेरी से गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि आरोपी इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता है। झारखंड में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर गतिरोध जारी है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में सरकार और आंदोलनकारी छात्र प्रतिनिधियों के बीच तीसरे दौर की वार्ता जारी है।
4: सरकार की 4 सदस्यीय मंत्री स्तरीय टीम छात्रों की मांगों पर चर्चा कर रही है। इधर JKLM विधायक जयराम महतो ने छात्रों के समर्थन में एक दिन की भूख हड़ताल शुरू की है। उन्होंने कथित परीक्षा अनियमितताओं की CBI जांच और मुख्यमंत्री से छात्रों के सीधे संवाद की मांग की है। वहीं रांची के सांसद और केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों का समर्थन किया। उन्होंने CBI और ED जांच, JPSC JSSC परीक्षाएं रद्द करने तथा पुलिस कांस्टेबल शारीरिक परीक्षा के दौरान जान गंवाने वाले 19 युवाओं के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: केंद्र सरकार ने 4 उच्च न्यायालयों में 30 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है। इनमें मद्रास, कलकत्ता, मध्य प्रदेश और कर्नाटक उच्च न्यायालय शामिल हैं। नवनियुक्त न्यायाधीश जल्द ही शपथ लेकर कार्यभार संभालेंगे। इन नियुक्तियों से चारों उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की कमी दूर करने और लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। सरकार ने पंजाब की मंडियों में पड़े 18 लाख मीट्रिक टन पुराने अनाज के भंडार को 20 सितंबर तक उठाने पर सहमति व्यक्त की है, ताकि राज्य में धान की बंपर फसल की उम्मीद के चलते भंडारण की जगह खाली हो सके। पंजाब से इस वर्ष केंद्रीय पूल में 170 लाख मीट्रिक टन अच्छी गुणवत्ता वाले चावल की आपूर्ति होने की उम्मीद है। पंजाब में आज तड़के सरहिंद जीटी रोड पर एक कार की टक्कर में 3 कांवड़ियों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वे उत्तराखंड के गंगोत्री से पवित्र जल लेकर पंजाब के फरीदकोट जिले के कोटकापुरा लौट रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मौके से फरार चालक की तलाश जारी है। जम्मू कश्मीर में रेल संपर्क को मजबूत करने के लिए कई बड़ी रेलवे परियोजनाओं का काम प्रगति पर है। जम्मू रियासी को पुंछ से जोड़ने वाली नई रेल लाइन सहित प्रमुख परियोजनाओं के लिए अंतिम स्थल सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी गई है। 190 किलोमीटर लंबी जम्मू रियासी पुंछ रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए फील्ड सर्वे शुरू कर दिया गया है। जम्मू और श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच 78 किलोमीटर लंबी अतिरिक्त रेल लाइन के लिए भी सर्वे को मंजूरी दी गई है। इस बीच जालंधर कैंट जम्मू तवी के बीच 216 किलोमीटर लंबी तीसरी रेल लाइन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए ने 33 राज्य जैव विविधता बोर्डों, केंद्र शासित प्रदेशों की जैव विविधता परिषदों और राष्ट्रीय संस्थानों को अभिगमन तथा लाभ साझाकरण के तहत 3 करोड़ रुपए से अधिक की राशि वितरित की है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बताया कि यह राशि भारत के कृषि और पशुपालन क्षेत्र की जैव विविधता संरक्षण के लिए भी है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। चीन में तूफान डॉल्फिन के मद्देनजर शंघाई के दोनों हवाई अड्डों पर 1,300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। आसपास के क्षेत्रों के 3 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। एक रिपोर्ट।
0: तूफान के बाहरी हिस्से ने कल राजधानी ताइपे सहित उत्तरी ताइवान को भी प्रभावित किया और उन क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई। ताइवान की कुछ एयरलाइंस ने भी चीन जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। तूफान की अधिकतम निरंतर हवा की गति आज सवेरे तक लगभग 162 किलोमीटर प्रति घंटा आंकी गई थी। इससे तेज बारिश हो रही है, जिससे भीषण बाढ़ और भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है और इसके चचियांग प्रांत और पड़ोसी फुचियान प्रांत के उत्तरी हिस्सों को प्रभावित करने की आशंका है। अधिकारियों ने चचियांग में भीषण भूस्खलन के खतरे की चेतावनी जारी कर दी है। शंघाई के हांगशाओ और पुडोंग हवाई अड्डों ने भी लगभग 60% अपेक्षित उड़ानों को रद्द कर दिया है। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
1: जापान में आज नागासाकी पर अमेरिका के परमाणु बम हमले की 81वीं बरसी है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री सानाई ताकाइची ने परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के लक्ष्य को हासिल करने के लिए यथार्थवादी और व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने की अपनी नीति दोहराई। ओडिशा में बारिश से कई इलाकों में नदियों का जलस्तर दोबारा बढ़ने से बाढ़ की आशंका बढ़ गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रशासन राज्य भर में निचले इलाकों और नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रख रहा है।
5: उड़ीसा में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा फिर बढ़ गया है और कई बाढ़ प्रभावित इलाकों में और ज्यादा पानी भरने की आशंका है। बालेश्वर के बस्ता इलाके में हालात फिर गंभीर हो गए हैं, क्योंकि मयूरभंज के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद जलका नदी का जलस्तर बढ़ गया है। राजगोविंदपुर, सुलियापदा, मोरड़ा और चित्रड़ा में बारिश से जलका नदी उफान पर है, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और सैकड़ों हेक्टेयर खेती की जमीन जलमग्न हो गई है। भद्रक में बैतरणी और सालंदी नदियों के बढ़ते जलस्तर ने चिंता बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, असम और मेघालय में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। आज शाम राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हल्की बारिश हो सकती है। भारत की अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीतकर अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब हासिल किया है। फाइनल में अश्मिता ने चीन की हान चेन शी को हराया। अमेरिका में आयोजित विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के पदकों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में रजत पदक जीता।

कि शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में कांस्य पदक अपने नाम किया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने के लिए देशभर में हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से समयबद्ध न्याय प्रदान करना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने केरलम के मलप्पुरम में जब्त की गई अवैध विस्फोटकों की बड़ी खेप के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। ओडिशा में बारिश से कई नदियों में जलस्तर बढ़ा, फिर से बाढ़ की आशंका। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना पहला BWF विश्व टूर खिताब जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ಇದುವರೆಗೆ ಸಿರಿಗಂಧ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳನ್ನಾಧರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಸಾರವಾಯಿತು. ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸಮಯ ಆಗಲಿದೆ 8:45. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹಿಂದಿ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆ ದೆಹಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ.
1: आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया. देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू. उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की. झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत. प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा. जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा. प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी ने लाभार्थियों को 1 करोड़ से अधिक घर सौंपकर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की. और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3,00,000 लोग विस्थापित. अब समाचार विस्तार से. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर इस वर्ष के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेताओं से मुलाकात की. प्रधानमंत्री ने कहा कि जो लोग खेलों से जुड़ते हैं वे जीवन में आगे बढ़ते हैं. उन्होंने देशवासियों से खिलाड़ियों का हमेशा उत्साह बढ़ाने की अपील की.
3: जो खेलेगा वो खिलेगा. ऑलवेज चीयर फॉर भारत. भारत माता की जय. भारत माता की जय. भारत माता की जय.
2: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीतकर पदक तालिका में 4th स्थान पर था. हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है. 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है. इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है. देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा. दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से इस अभियान में उत्साह के साथ शामिल होने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प फिर से लेने की अपील की है. प्रधानमंत्री ने कहा कि तिरंगा देश का गौरव है. उन्होंने इस बात पर

0: प्रसन्नता व्यक्त की कि इस वर्ष का अभियान वंदे मातरम को समर्पित है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी श्री विजयपुरम में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने वीर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपराष्ट्रपति वंदे मातरम पर तिरंगा संगीत कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने देश के स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े भारत छोड़ो आंदोलन का स्मरण किया।
1: It is indeed a pleasure to launch this campaign today on the August Gandhi Divas as we commemorate the Quit India Movement of 1942. Millions of Indians responded to his call and rose against the British with the unwavering resolve of do or die on this day. It is therefore deeply significant that we launch the Har Ghar Tiranga campaign from the historic islands on this historic day.
0: गृह मंत्री अमित शाह ने पुदुचेरी में तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हजारों लोगों ने इस यात्रा में तिरंगे के साथ भागीदारी की। मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर सहित देश भर में आज से हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत सप्ताह भर के कार्यक्रम शुरू हुए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: झारखंड सरकार ने आंदोलनरत छात्रों की अधिकांश मांगों पर सहमति जताई है। राज्य के मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने कहा कि सरकार 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और वर्ष 2023 से 25 की बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने पर सहमत है। आज सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद में मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी। साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए आईआईटी आईएसएम आईआईएम रांची और एक्सएलआरआई के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाएगी। छात्रों ने कहा कि सीबीआई जांच की मांग पर कोई समझौता नहीं होगा। इस बीच झारखंड लोक सेवा आयोग के 3 मौजूदा सदस्यों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। तीनों को सीआईडी ने कल पूछताछ के लिए तलब किया है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को ये स्पष्ट संदेश दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। नई दिल्ली में रक्षा मंत्री ने एक कार्यक्रम में ये बात कही।
3: पहलगाम में धर्म पूछ कर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह पुदुचेरी पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्रदान किए जाने के समारोह में शामिल हुए। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज प्राप्त करना किसी भी अनुशासित पुलिस बल के जीवन के सबसे गौरवशाली क्षणों में से है। गृह मंत्री ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा औपनिवेशिक काल के कानूनों की जगह लाए गए 3 नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य प्रौद्योगिकी आधारित और समयबद्ध प्रणाली के माध्यम से नागरिकों को समयबद्ध न्याय निश्चित करना है।
4: ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है। ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है। ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है।
0: उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में वर्तमान चीनी मौसम के लिए चीनी के भंडार की स्थिति, उत्पादन और जरूरतों का आकलन किया गया। श्री जोशी ने चीनी का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए इसकी उपलब्धता की सघन निगरानी और समय समय पर आवश्यक उपाय करने पर बल दिया ताकि पूरे मौसम के दौरान चीनी की स्थायी आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने आज राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए से संबंधित मामलों

0: को लेकर शिक्षा मंत्रालय के सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री जोशी ने संस्थागत व्यवस्था को मजबूत करने, प्रक्रिया सुचारू बनाने और विद्यार्थियों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श किया। श्री जोशी ने कहा कि सरकार का मुख्य ध्यान मजबूत, पारदर्शी और विश्वसनीय परीक्षा व्यवस्था बनाने पर है, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी की आकांक्षा पूरी हो सके। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। इनमें करीब 1 करोड़ मकान महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी में स्वीकृत 2,09,000 आवासों में से 2,03,000 से अधिक आवास महिलाओं को आवंटित किए गए हैं। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए 16,600 से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं, जबकि करीब 22,000 आवास अनुसूचित जाति, 14,000 से अधिक अनुसूचित जनजाति और 75,000 से अधिक आवास अन्य पिछड़ा वर्ग के लाभार्थियों को आवंटित किए गए हैं। इस योजना में आवासों के स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। पीएम आवास योजना शहरी की शुरुआत वर्ष 2015 में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं से युक्त हर मौसम के लिए उपयुक्त पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। 31 जुलाई को हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है। इसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है, जो वर्ष 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान में हुई घटना की जांच कर रहा है। इसे गंभीर घटना के रूप में दर्ज किया गया है। दोनों पायलट की मादक पदार्थों के सेवन की जांच की गई। जांच पूरी होने तक दोनों पायलट को ड्यूटी से हटा दिया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जांच और अंतिम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। जनजातीय लोगों के अधिकारों, संस्कृति, परंपरा और योगदान को मान्यता देने के लिए आज दुनिया भर में विश्व जनजातीय दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1994 में जनजातीय लोगों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस की शुरुआत की थी। इस वर्ष का विषय है जनजातीय धाय सम्मान, जीवन और देखभाल का संरक्षण। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। हरियाणा में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित पवित्र कलश वंदन यात्रा आज कंबोपुरा गांव पहुंची। बड़ी संख्या में लोगों ने संत श्री रविदास मंदिर में यात्रा का स्वागत किया। ये यात्रा गुरु रविदास की जन्मभूमि उत्तर प्रदेश के काशी स्थित सीर गोवर्धनपुर से शुरू हुई थी। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, आसाम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। ओडिशा में एक बार फिर तेज बारिश होने के बाद बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: उड़ीसा में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस सीजन में बैतरणी नदी में तीसरी बार बाढ़ आई है, जिससे जाजपुर और भद्रक जिलों के कुछ हिस्सों में फिर से पानी भर गया है, जबकि बैतरणी की एक शाखा कानी नदी के कारण जाजपुर जिले में फिर से बाढ़ आ गई है। IMD ने पूरे राज्य के लिए येलो वार्निंग जारी की है और अनुमान लगाया है कि उत्तरी ओडिशा, पश्चिम ओडिशा के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाके में कम दबाव वाले सिस्टम के कारण भारी बारिश होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: चीन के पूर्वी तट से तूफान डॉल्फिन के टकराने से झेजियांग और फुजियान प्रांत प्रभावित हुए हैं। मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस बीच शंघाई के दोनों हवाई अड्डों ने 1300 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी हैं और 3,00,000 लोग विस्थापित हुए हैं। तूफान के तट से टकराने के बाद उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और धीरे धीरे कमजोर पड़ने की संभावना है।

0: उज्बेकिस्तान में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुंग पंडियन ने 65 किलो वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने आज कुल 285 किलो का भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल के पदक विजेताओं से बातचीत की, लोगों से भारतीय खिलाड़ियों का हमेशा उत्साहवर्धन करने का आग्रह किया। देश भर में कई कार्यक्रमों के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों से अभियान में शामिल होकर विकसित भारत के लिए फिर से संकल्प लेने की अपील की। झारखंड सरकार अनियमितताओं के आरोपों के बाद जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने पर सहमत। प्रदर्शनकारी छात्रों ने कहा आंदोलन जारी रहेगा। जेपीएससी के 3 सदस्यों ने इस्तीफा दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया कि भारत आतंकवाद कतई बर्दाश्त न करने की नीति के तहत देशवासियों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा। और तूफान डॉल्फिन चीन के पूर्वी तट पर पहुंचा, 1300 से अधिक उड़ानें रद्द और 3,00,000 लोग विस्थापित। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम निशित कुमार विद द न्यूज एट 9। The headlines. Prime Minister Narendra Modi interacts with medal winners of Commonwealth Games 2026, urges citizens to always cheer for Bharat. Har Ghar Tiranga campaign begins with multiple events across the country. Vice President and Prime Minister appeal to people to renew commitment to Viksit Bharat by joining this movement. Jharkhand government agrees to scrap JPAC preliminary exam over allegations of irregularities. Protesting students say agitation will continue. 3 JPSC members resign from their posts. Defence Minister Rajnath Singh asserts Operation Sindoor sent global message that India will go to any extent to protect its citizens with zero tolerance approach to terrorism. Pradhan Mantri Awas Yojana Urban has crossed major milestone with over 1 crore houses handed over to beneficiaries so far. And Typhoon Dolphin hits China's eastern coast, over 1,300 flights cancelled while 3,00,000 people relocated. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today met the medal winners of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi. Sharing a video message, Mr. Modi said that those who participate in sports will prosper in life and urge citizens to always cheer for Bharat.
2: जो खेलेगा वो खिलेगा. Always cheer for Bharat. भारत माता की. भारत माता की. भारत माता की.
1: India finished at the fourth spot on the medals table at the games held in Glasgow, Scotland between 23rd of July and the 2nd of August. Indian athletes won 39 medals including 13 gold, 17 silver and 9 bronze across various sporting disciplines. The Har Ghar Tiranga campaign is being celebrated nationwide to foster a sense of patriotism among citizens, strengthen national unity and promote India's cultural heritage.

0: अब आप सुनेंगे त्यागराज स्वामी की एक कृति जो राग आनंद भैरवी तथा आदि ताल में निबद्ध है.
1: You will now listen to a composition of Tyagaraja Swami in the rag Ananda Bhairavi set to Adi Taal.

0: श्रीमती सात्विका मोहन अपना गायन जारी रखते हुए अब प्रस्तुत करेंगी नारायण तीर्थ द्वारा रचित एक तरंगम, जो राग बिलहरी तथा आदि ताल में निबद्ध है।
1: कंटिन्यूइंग हर वोकल रिसाइटल, श्रीमती सात्विका मोहन विल नाउ प्रेजेंट ए नारायण तीर्थ तरंगम इन द राग बिलहरी सेट टू आदि ताल।

0: अब आप सुनेंगे मैसूर वासुदेवाचार्य की एक रचना जो राग सिम्हेंद्र मध्यमम तथा मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
1: यू नाउ लिसन टू ए कंपोजिशन ऑफ मैसूर वासुदेवाचार इन द राग सिम्हेंद्र मध्यमम सेट टू मिश्र चापू ताल।

0: वो था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर विद्वान पीरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत ने प्रस्तुत किया.
1: दैट वाज द तन्यावर्तनम प्लेड ऑन मृदंगम बाय विद्वान पीरवली जय भास्कर एंड ऑन घटम बाय श्री एम चंद्रकांत.
0: श्रीमती सात्विका मोहन अपने गायन का समापन श्री कनक दास की एक कृति के साथ कर रही हैं, जो राग सिंध भैरवी तथा खंड चापू ताल में निबद्ध है.
1: श्रीमती सात्विका मोहन कंक्लूड्स हर वोकल रिसेटल विद द कंपोजिशन ऑफ श्री कनकदासा इन द राग सिंधु भैरवी सेट टू खंड चापू ताल.

0: इसी के साथ हम रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में श्रीमती सात्विका मोहन का गायन समाप्त करते हैं। आज की सभा में उनके साथ वायलिन पर थे श्री ओ राजशेखर, मृदंगम पर विद्वान पेरवली जय भास्कर और घटम पर श्री एम चंद्रकांत। रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा के लिए आकाशवाणी हैदराबाद के प्रसारण कक्ष में इस संगीत कार्यक्रम का ध्वन्यांकन किया गया है। ये कार्यक्रम आपके लिए आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रस्तुत किया गया है।
1: With that, we conclude the vocal recital by Srimati Satvika Mohan in the broadcast of Ravivasriya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. She was accompanied on violin by Sri O. Rajshekar, on mridangam by Vidwan Peravalli Jayabhaskar and on ghatam by Sri M. Chandrakant. This concert was recorded at the studios of Akashwani Hyderabad for Ravivasriya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha and brought to you from the Delhi station of Akashwani.
0: ये आकाशवाणी का इंटरप्रेस चैनल।